0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
1: इट वॉज तमिलनाडुज बिगेस्ट पॉलिटिकल मोमेंट। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय टेकिंग ओथ एज चीफ मिनिस्टर।
2: श्री जोसेफ विजय एनम नान சட்டமுறைப்படி நிறுவப்பெற்றுள்ள
1: பட் விதின் ஹவர்ஸ் ஆஃப் த ஹிஸ்டாரிக் செரிமனி அன்னதர் நேம் பிகான் டாமினேட்டிங் சோஷியல் மீடியா டைம்லைன்ஸ் த்ரிஷா கிருஷ்ணன்

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी नॉइज फिल्टर्ड नंबर्स डिकोडेड इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ वी कनेक्ट द डॉट्स योर डेली एज योर ग्लोबल एडवांटेज इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी वीकनाइट्स ऑन NDTV प्रॉफिट।
0: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
2: लॉन्च कंट्रोल 0 to 100।
3: दिस इजंट जस्ट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, दिस इज अबाउट हाउ यू मूव। दिस कार मेक्स नो सेंस येट इट मेक्स एवरी सेंस। What we are sitting inside is a Joby powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद ये हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा
7: का राजा आर्योर मसाला।
0: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
8: What's the job?
9: Floppy people.
10: Kolkata tram.
11: The highest number of voters.
12: Tamil Nadu votes decisive.
13: Kapratapri ka mahal hai, Udhampur patrao kya gaya ha.
14: I've always liked NDTV, it's the most reliable news channel more than anything.
15: DBK headquarters here.
16: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
17: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
18: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
14: So I really love the channel. I saw Shiv sir, and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
19: Happy meeting NDTV team here.
20: Thanks for NDTV.
21: Padmija Joshi.
22: Shreya Shide.
23: This is Shreya Ghosh.
24: Rakhandeep Chaudhary.
25: Manoj Yalowiwal.
26: Deepak Bopanav.
27: This is Vikti.
28: Tanushka Datta.
29: Sam Daniel.
30: Vika Ramaswamy.
31: Ritu Rajpurohit.
32: Shiv Arur.
33: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
6: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
7: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
8: इकोनॉमी बिजनेस वर्ल्ड टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, वी कनेक्ट द डॉट्स। योर डेली एज, योर ग्लोबल एडवांटेज। इंडिया बिजनेस रिपोर्ट विद मी गौरी द्विवेदी, वीक नाइट्स ऑन एनडीटीवी प्रॉफिट।
9: Launch control, 0 to 100.
10: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
11: This car makes no sense, yet it makes every

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: एकेडमिक फ्यूचर ऑफ द स्टूडेंट्स।
1: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बारी जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया।
2: सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं, और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दें, जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में ना उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का हाई नहीं है, सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए। और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा, इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पर कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो।
3: Alright, some breaking news now coming in, and given the West Asia conflict's impact on fuel, Air India has now cut down international flights. It's decided to reduce several international flights temporarily, suspend some services as well, and this is between June and August, one of the busiest times for travel. The airline has said this step has been taken due to airspace restrictions over certain countries and the record high fuel prices for international operations. Well, let's go across to Tanushka now for more on this story. And Tanushka, take us through, which flights are we talking about? And so there's going to be a reduction in the number of flights on various sectors and routes.
4: Precisely, Gargi. So, Air India has cut a further of about 100 daily flights beginning from June to August, including a number of long-haul flights. So, this is going to be mainly international routes, long-haul flights. And as you were also mentioning, this is amid the sharp hike in jet fuel prices as well as the rupee's crash. Now, these cuts come on top of about 90 daily flight cuts in May itself. And the airline, which is used to having around 1,200 flights daily, is now going to suffer around losses of 22,000 crore, which is last fiscal, with the West Asia war showing no signs of ending. The most recent cuts include thrice weekly flights between Delhi and Chicago, four times weekly between Delhi and New York, Delhi and Shanghai, and Mumbai and New York, Delhi and daily flights between Delhi and Chennai and Singapore and Mumbai as well. And flights from Singapore have also been terminated for now. Now, Air India has today specifically made this announcement with respect to rationalization of its services on the select international routes between June and August. These adjustments have been made in response to a combination of factors, the airline says, including continued airspace restrictions and a record high jet fuel prices for international operations. Remember that jet fuel prices contain about 40% of operational costs for any airline. Back to you.
3: All right, Tanushka, thanks so much for joining us with all those details. With that, we'll sip into a short break. More updates on the other side. Do stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: India's unshakable news habit, NDTV.com, is India's number one English news website.
4: முதலமைச்சராக கொண்ட அமைச்சரவை மீது இப்பேரவை தனது நம்பிக்கையை தெரிவிக்கிறது.
5: I declare that this house has confidence in C. Joseph Vijay and as Chief Minister of the House.
4: தீர்மானத்தை ஆதரித்தோர் 144
5: people supported.

0: टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बारी जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया।
1: सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दें, जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में ना उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का हाई नहीं है, सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा, इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पर कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो।
2: So a lot of despair and anger on the ground, especially among the lakhs of students. The NTA says a whistleblower alert on May 7th exposed similarities between the leaked WhatsApp PDFs and the actual exam questions. The opposition, meanwhile, says the NEET controversy has now become an annual saga, accusing the BJP government of failing to protect the integrity of national exams. While the opposition has moved to sharply critique the paper leak, Rajasthan Minister Madan Dilawar has downplayed the leak by saying that cancellation was not a big deal.
3: 2014 से जब से मोदी सरकार आई है टोटल हमारे देश में 93 पेपर लीक हुए हैं 93 और इनमें अधिकतर पेपर डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बीजेपी की एनडीए की सरकारों में लीक हुए हैं। लगभग 6 करोड़ युवाओं का भविष्य इन 93 पेपरों में बंद था, 6 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हो गया इन 93 पेपर जो लीक हुए। इनमें मोस्टली पेपर लीक हुए राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और गुजरात में। इन 4 राज्यों में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, इन 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है।
4: जो मेहनत करता है, जो योग्य है, उसको जो है उसके साथ की जा रही है। अब यही छात्र अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो यही सरकार में लाठी से पीटने का काम जिम्मेदारी बनती थी। अब पेपर लीक ना हो, एक बार नहीं कई एक बार जो पेपर लीक हो रहा है, ये देश के नौजवान जो है उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ किया गया है।
5: अव्वल तो सबसे पहले उन बच्चों को सोचिए, उनके परिवारों को सोचिए, उनकी पृष्ठभूमि को सोचा जाए। हम क्या दे रहे हैं उनको? सालों की मेहनत, उसके बाद अनिश्चितता। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने आज ही से एडवर्टीजमेंट डालने शुरू कर दिए और प्रधानमंत्री जी की ओर से क्या वो वाकिफ नहीं है? सदन में हम सब ने उठाया था, खास तौर पे एनटीए की कार्यप्रणाली पर, पारदर्शिता के अभाव पे, उत्तरदायित्व के अभाव पे मैंने प्रश्न खड़ा किया था। एक बार नहीं, एनटीए के निर्माण के दौरान से बाद तक क्या हासिल हुआ? आपने परीक्षा कैंसिल कर दी। आपके लिए प्रशासनिक निर्णय था, लेकिन इस
6: अनदर बॉय गेट 70 और 75, 98 मार्क्स इज गिवन टू वन बॉय कंटिन्यूअसली गेट, बट फॉर नीट ही गोज टू अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर ही कैन अफोर्ड टू पे मनी, बट द बॉय हु इज गेटिंग फर्स्ट मार्क cannot afford to pay money, he fails in NEET. That is against the students. Why NEET when they are getting good marks in the class final exams? That is our stand. That is why we have not introduced NEET when we were in power earlier between 2006 and 2011, but when after Edappadi came, the central government had pushed NEET on us.
2: All right, now some breaking news coming in, and the government sources have clarified on the use of the word austerity over the Prime Minister's recent statements where he's asked people to cut down on the use of resources, asking them to use public transport and cut down on gold purchases, foreign travel. Several requests were made by the Prime Minister, and since then,

0: वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
1: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज एडॉप्ट किया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉयज का इश्यू है। एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
2: আমি ওয়েলকাম করেছি এবং আমি উনার টুইট দেখার পরে, মানে খবরটা দেখার পরে, আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক। স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
3: The Prime Minister has reduced the number of vehicles in his cavalcade. The central government officials and ministers are also taking the required austerity measures. The question is that Rahul Gandhi and the Congress party, why are they silent and why have they not followed action in places where there is Congress government? This further proves the point that the Congress party believes in politics, not national interest. This is why, whether it is Himachal Pradesh, where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi, in the mind of the people of the country, is considered not as a pro-India politician, but an opportunist anti-India politician.
4: All right, and the government now saying that don't call it austerity measures. Well, with that, we'll sip into a short break. Coming up on the other side, how Vijay has removed his astrologer, who was appointed as an OSD just yesterday. Stay tuned.

0: for the people, this government will have strong conscience as well. Take a listen to the Tamil Nadu Chief Minister Vijay's remarks after he won the floor test today.
1: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, முதலில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் மக்களுக்கான இந்த ஆட்சியை மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்து வெற்றி பெற செய்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நமது அரசின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களும் நம்மீது நம்பிக்கை வைத்து தீர்மானமாக வாக்களித்தனர். வாகை சூடும் அந்த வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் 34.92% 1,72,26,208 வாக்குகளை மக்கள் தந்தனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தனி பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். குதிரை பேரத்தில் எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்று கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
2: கட்சியாகத்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும். எங்களுக்கு எதிரி கட்சி இல்ல, எதிர்கட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்போம். எங்களுடைய தலைவர்கள் அந்த பாதையைத்தான் எங்கள் வலியுறுத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவித்து, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எதிர்த்துத்தான் வாக்களிப்பார்கள் என்பதை தெரிவித்து அமர்கின்றேன்.
3: தீர்ப்பளித்து இன்றைக்கு முதலமைச்சருக்கு வாக்களித்துள்ளார்கள், அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம் அதிமுக சார்பாக. அதே போல நாங்கள் யாரும் பதவிக்கு ஆசைப்படுவது கிடையாது, பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு அவர் கிடையாது.
4: தலைவருக்கு தெரியாம திருட்டுத்தனமாக இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவு தர வச்சிருந்தீங்க. இப்ப நான் சொல்றது ரொம்ப டீசென்டான வெர்ஷன். உங்க ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஆட்சியா இல்லாம ரியல் ஆட்சியா நடத்துங்க, அது மட்டும்தான்.
0: Shreya, folks, other news now. Days after Prime Minister Modi's call for saving fuel, Prime Minister Modi has now cut in the number of vehicles in his own convoy to just 2 cars. As per sources, Prime Minister Modi has even asked for the number of EV vehicles to be increased in the convoy. Remember that earlier this week, just a few days ago, Prime Minister Modi had reduced his convoy size during domestic visits to Gujarat and Assam recently as well. Not just that, the Prime Minister, the Home Minister, they both have reduced the size of their respective convoys. Several NDA chief ministers like the UP Chief Minister Yogi Adityanath, Rajasthan Chief Minister Bhajan Lal Sharma, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav, they all have also cut down their convoy. Take a listen in to some of the BJP reactions on this.
5: Koi yuddha hota tha to log desh hit mein sona daan de dete the. Aaj daan ki zarurat nahi hai, lekin desh hit mein हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे. ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे, अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पुल करने का प्रयास करें।
6: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
7: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा, नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा, कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से, कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉयज का इश्यू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
8: आमी वेलकम करेछी एवं आमी उनार ट्वीट देखार परे माने खबरटा देखार परे আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক, স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
9: The Prime Minister has reduced the number of vehicles in his cavalcade. The central government officials and ministers are also taking the required austerity measures. The question is that Rahul Gandhi and the Congress party, why are they silent and why have they not followed action in places where there is Congress government? This further proves the point that the Congress party believes in politics, not national interest. This is why whether it is Himachal Pradesh where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi in the mind of the people of the country is considered not as a pro-India politician but as an opportunist anti-India politician.
0: Always in breaking news from Mulayam Singh's younger son's demise, well, in the latest post-mortem report from King George's Medical University in Lucknow of Prateek Yadav lists cardiorespiratory collapse, and that's due to massive pulmonary thromboembolism as the cause of death, mentioning 6 anti-mortem injuries found on his body, that's before the death. The report says, however, whole heart and pulmonary thromboembolic material preserved in formalin, and the examination is preserved for chemical analysis, which will be handed over to the person concerned. Well, Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav's son and BJP leader Aparna Yadav's husband Prateek Yadav passed away this morning. There was bruise on the front right side of the chest, bruise below the right armpit, upper arm area as well, and also a long bruise on the inner side of the right forearm. The latest coming in is that Prateek Yadav was suffering from lung ailment and he had multiple bruises all over the body as well. I remember Prateek Yadav is the son of late Samajwadi Party founder Mulayam Singh Yadav, who died at the age of 38 in Lucknow. He was brought dead at the Lucknow Civil Hospital earlier today. And the latest coming in is the autopsy report, which has now been released, which says bruise on chest and arm. Report says death due to blood clot in lungs as well. The autopsy report says that the injury occurred in the last 5 days before his death as well. He was just 38 years old, and the report says, however, that the whole heart and pulmonary thromboembolic material preserved in formalin for further chemical analysis as well. My colleague Ranveer is now joining me live on this. Ranveer, the autopsy report has given out latest revelations in Prateek Yadav's demise. He was 38 years old and he was brought dead at the Lucknow Civil Hospital earlier today. Ranveer.
10: Autopsy reports came out, and the report says that due to some blockage

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्यन मसाला।
5: एक्सीलेंस मेजर्ड बाय दोज हु बिल्ट इट। प्रेजेंटिंग द जूरी ऑफ द एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स। सुनील भाटी मित्तल चेयरमैन ऑफ द जूरी, फाउंडर एंड चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। नोएल नवल टाटा चेयरमैन टाटा ट्रस्ट्स। यूके सिन्हा फॉर्मर चेयरमैन सेबी। किरण मजुमदार शॉ चेयरपर्सन बायोकॉन ग्रुप। सी एस सेट्टी चेयरपर्सन SBI। जयंत सिन्हा फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड सिविल एविएशन। रमेश दमानी वैल्यू इन्वेस्टर एंड मेंबर ऑफ BSE। सिरिल श्रॉफ मैनेजिंग पार्टनर सिरिल अमरचांद मंगलदास। NDTV प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स ऑनरिंग एक्सीलेंस कमिंग सून।
6: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: of the Congress in Kerala, they have weighed in favour of V.D. Satheesan. Now you've got K.C. Venugopal as the pick of the Central High Command. Looking at past precedent, whenever the Congress has come into government in any state, the camp politics has predictably kicked in. Three camps had play in Kerala as well. One, of course, is for Leader of Opposition V.D. Satheesan. The second is for Senior Leader Ramesh Chennithala. And finally, there is General Secretary of the party, K.C. Venugopal himself, somebody believed to be extremely, extremely close to the high command, is always seen at the elbow of Rahul Gandhi. Now, with this tug of war continuing for 10 days, no real resolution in sight, even now, the BJP has naturally grabbed this moment to take pot shots.
1: In fact, it never happened in the history of Kerala. UDF secured a thumping majority, more than 100 seats. Then even after days, and even after so-called hectic consultations, discussions, nothing is coming out. And absolutely ridiculous position. There are group dances taking place everywhere, protest marches. They even tore out Umman Chandi's photo. So Congress is always ill-famous for its worst kind of groupism. But this has limited, has no limit at all. Moreover, one can easily predict the future of this government before it begins.
2: देखिए मैं तो आज बायनोकुलर लेकर आया हूं कि कहीं पर तो केरला कांग्रेस का सीएम का कोई दावेदार दिख जाए पर दिखाई ही नहीं दे रहा 9 दिन हो गए हैं नतीजों को 9 दिन 9 days पर कांग्रेस पार्टी कंप्लीट कंफ्यूजन वाली स्थिति में है अब पश्चिम बंगाल में देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई सीएम कौन है वो समझ में आ गया असम में भी सरकार बन गई पर कहां केरलम में जहां पर उनको फुल मेजॉरिटी मिली है कांग्रेस को वहां पर फुल कंफ्यूजन है
3: इज ए प्रॉपर डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक पार्टी विच हैज मोर देन 100 इयर्स हिस्ट्री बट हियर इज अ बीजेपी विच हैज नॉट इवन क्रॉस 50 इयर्स हिस्ट्री दे कैन अडॉप्ट एनी मीन्स टू स्टैम्प देयर डिक्टेटोरियल यू नो वर्ल्ड टू सेलेक्ट इज कैंडिडेट और फॉर्म ए गवर्नमेंट कांग्रेस इज नॉट लाइक दैट
0: And that brings us to the big question of the day. What does one make of the open claims to power being made by all of these contenders in Kerala? Is the Congress veering dangerously close to repeating its past mistakes where a delay in deciding on leadership has led to an implosion? And finally, the million-dollar question, will the claim of the foot soldiers prevail or will the will of the high command eventually gain precedence? And in fact, the news that is just coming in right now, the Congress huddle ended quite a while ago in Delhi, but this announcement is not going to happen today either. The wait for a chief minister for Kerala continues even now. Another day, another deadline, the final decision is still awaited. Janendra joins us live from the residence of Mallikarjun Kharge. Aaj kya ho gaya Janendra? Ab to 10 din ho gaye. एक दिन और की मोहलत क्यों मांगी गई है किसको मनाने की कोशिश की जा रही है
4: देखिए नाम पर मुहर लगा ली है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने लेकिन ये मैसेज देने की कोशिश है कि फैसला दिल्ली से नहीं हुआ है ऐलान दिल्ली से नहीं हो रहा है ऐलान त्रिवेंद्रम में हो रहा है और इसी वजह से अनाउंसमेंट को आज होल्ड किया गया है और ऑफिशियली कांग्रेस ने ये कहा है कि केरलम के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान कल किया जाएगा कल दोपहर तकरीबन 12 बजे के आसपास विधायक दल की बैठक बुलाई गई है और माना जा रहा है कि उसी विधायक दल की बैठक में बाकायदा प्रस्ताव पेश किया जाएगा और विधायक दल की बैठक के बाद जैसा हमने बीजेपी की बैठकों में देखा कि विधायक दल की बैठक में ही मुख्यमंत्री का नाम सामने आया कुछ वही तरीका कांग्रेस भी करने जा रही है हालांकि इसके पहले हमने देखा राजस्थान हो कर्नाटक हो तमाम अनाउंसमेंट दिल्ली से हुए लेकिन इस बार चूंकि सेंटिमेंट जो है केरला ग्राउंड पर उसके मद्देनजर कांग्रेस लीडरशिप ने डिसाइड किया कि ये अनाउंसमेंट हम कल करेंगे त्रिवेंद्रम से करेंगे कल त्रिवेंद्रम में कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होगी और उसमें चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट जो है वो किया जाएगा और अभी भी पिक्चर
0: ये भी सही है सारी बैठक दिल्ली में हो रही है लेकिन लोगों को बताया जा रहा है कि फैसला केरला में लिया जा रहा है ये तो लोग भी देख रहे हैं ना कि सारी बैठकें तो दिल्ली के अंदर ही हो रही है आपने कहा मोहर लगा दी गई है तो थोड़ा सा हमें भी आइडिया दे दीजिए और थोड़ा सा जो सारे लोग अभी केरला में देख रहे होंगे खासतौर पर जो कंटेंडर्स हैं कौन है अल्टीमेटली केरला का किंग कौन?
4: देखिए एक बड़ी अजीब स्थिति आ गई है कांग्रेस लीडरशिप के सामने, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि विधायक दल में जिसको बहुमत होता है, जिसके पास ज्यादा विधायक होते हैं, वही मुख्यमंत्री बनता है और वो नंबर है केसी वेणुगोपाल के साथ। लेकिन जो केरल के आम लोगों का सेंटिमेंट है और कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं IUML और केरला कांग्रेस, ये सभी वीडी सतीशन के पक्ष में है और आम लोग वीडी सतीशन के पक्ष में है। माना जाता है कि उन्होंने ही पिनराई विजयन को टक्कर दी 5 साल नेता विपक्ष के तौर पर और इसी वजह से बड़ी जीत हुई। तो बड़ी दुविधा की स्थिति है अभी भी, जबकि मीटिंग खत्म हो लॉक किया जा चुका है अंदर खाने। केसी का कैंप क्लेम कर रहा है कि IUML से बात की जाएगी, केसी ही बनेंगे। वीडी सतीशन का कैंप क्लेम कर रहा है कि नहीं नहीं, वीडी के नाम पर मुहर लग गई है और केरला के सेंटिमेंट को कांग्रेस लीडरशिप ने एक्सेप्ट कर लिया है। अभी भी अगर आप मेरी राय पूछे तो चूंकि विधायकों में ज्यादा पलड़ा केसी का भारी है, ऐसे में अभी भी नंबर एक तो मैं उन्हें ही मानकर चल रहा हूं, वो राहुल गांधी के भी करीबी है। लेकिन फिलहाल पंजा आधिकारिक तौर पर अब रहस्य पर से पर्दा उठने का इंतजार है, जो संभवतः कल ही हो पाएगा।
0: सो टिपिकल, सब लोग कह रहे हैं मोहर लग गई है और सब लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारे नाम पर मोहर लग गई है, पर जिसको मोहर लगानी है वो नहीं बता रहे हैं कि मोहर किस पे लगाई है। बट अल्टीमेटली एवरीवन नोज वेयर दैट डिसीजन इज गोइंग टू बी टेकन। जैनेन्द्र, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, बिकॉज टुमारो अगेन आई सस्पेक्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग डे फॉर यू। निखिल जैन इज हियर विद अस इन द स्टूडियो। वी आर ऑल्सो जॉइंड बाय अनिल एंटनी, नेशनल सेक्रेटरी एंड नेशनल स्पोक्सपर्सन ऑफ द BJP. Anand Kochukodi will be joining us in just a second, and Mr. Araj Gopalan, senior journalist, looking very, very gleeful this evening. Nikhil Jain, not so much. What's happening? 10 days, Nikhil Jain. BJP has got its binoculars out, wondering where is the chief minister?
5: Padmira, what's happening is that we are seeing a Kerala Congress government forming in Kerala. I don't know why the BJP is so jelly about it. They've been trying and clamoring to make a government in Tamil Nadu, in Kerala, in so many parts of the country, but they're not able to do that. And now the Congress is forming a government in Kerala. And let's remember, the difference between the BJP and the Congress is that in the BJP, you have two people who are deciding people by a parchi system, where even the former chief ministers don't know who would be announced as the chief minister. But in the Congress, you have the high command of the party consulting with the state in charge, with the PCC president, with the former PCC president, the former LOP. You have three very strong people who are in contention for the race. The MLA's views are being taken into account, the people's polls are being taken into account, and accordingly a decision is being made. And if you want to
0: Nikhil
5: make
0: Jain,
5: a proper informed decision,
0: everyone watching you right now knows exactly who is the person taking the decision. What are all these consultations you're talking about? No. These consultations have carried on for 10 days. अल्टीमेटली जिसको पर्ची निकालनी है वो तो हमें पता ही है, जिसके घर के अंदर मीटिंग हो रही है, द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग द मीटिंग, यू माइट एज वेल टेक अ कॉल, राइट?
5: नो पद्मजा, अगर ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके ही पर्ची निकालनी होती तो 10 दिन पहले ही अनाउंस हो गया होता। द ओनली रीजन इट इज टेकिंग 10 डेज इज बिकॉज व्यूज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर बीइंग टेकन एंड दे आर बीइंग वेड अगेंस्ट ईच अदर, बिकॉज एज हैज बीन रिपोर्टेड इन द मीडिया, केसी वेणुगोपाल सीम्स टू हैव सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द MLAs, व्हाइल वीडी सतीशन सीम्स टू गेट द मैक्सिमम पॉपुलर वोट, व्हाइल रमेश चेन्नीतला कंटिन्यूज टू बी द सीनियर मोस्ट लीडर ऑफ द कांग्रेस इन केरला, सो फार एज द लिमिटेड स्टेट ऑफ केरला इज कंसर्न। नाउ दीज आर टफ कॉल्स दैट द हाईकमांड एंड द पार्टी लीडरशिप would have to make, that who do we go with? Do we go with the people as the constitution prescribes that the MLAs are to choose the chief minister, or do we listen to the will of the voters and we go by a public poll, or do we give credence to the seniority metric that the senior most person should be made the chief minister? And these are tough calls to make, which is why it is taking
0: time.
5: But
0: aren't these things that are decided before going into election? You already have a Ramesh Chennithala who has led your campaign since 2021. Or is the real problem, Nikhil Jain, these posters that are coming up all over Kerala? You've got posters in Wayanad where somebody is threatening, of all people, Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi, and saying you will never be able to win Wayanad, you will never be able to win Amethi. So now they are not even, even the pretense is gone. Now it's an open warning. It's almost like a semi-rebellion which is happening.
5: Padmaja, we don't know who put up these disgusting posters. Nobody should be speaking in that manner for any elected member of parliament, whether the leader of the Congress or the BJP. I don't support that, and I'm sure these are not Congress workers. For all we know, our very good friend Mr. Anil Antony has put them up. We don't really know, so I'm not going to give any credence to that. What is important is that discussions with the stakeholders are happening. Mallikarjun Kharge is on it, Sonia Gandhi is on it, Rahul Gandhi, KC Venugopal, the Kerala State in Charge, the Kerala PCC, Deepa Das Munshi, and all the other stakeholders that are involved. And you say that these are decisions that should have been taken before the elections. I strongly disagree, and I'll tell you why. When you're contesting a number of seats, you don't know which of the seats are the ones which you'll actually win. You don't know who your MLAs will be. It's only after the result that you know, okay, these are the people who've been selected as MLAs, and these are their views, and these are their contentions, these are their likes, these are their dislikes. All these decisions can only

0: the meeting of the legislature party of the Congress is going to take place, and that announcement hopefully is finally going to happen. Okay, and now let's shift our focus to another election, but one that is going to happen next year. We're talking about Uttar Pradesh, and it seems that the main opposition party has a sort of death wish. Why? Because you've got a very prominent spokesperson of the Samajwadi Party sparking a caste storm. What happened was that Rajkumar Bharti, the national spokesperson of the Samajwadi Party, has now been booked by the UP police for making derogatory remarks against the Brahmin community. In a viral video, in an event that was organized by the Rajiv Gandhi Foundation, Mr. Bharti is heard saying, while some prostitutes may be good, they may have some good in them, no Brahmin can ever be good. Simply can't be expected of them. After a massive political backlash, he issued an apology in which he claimed that his remarks have been distorted and that he never intended to hurt anyone's sentiments. First, listen in to actually what was said.
1: Brahman balana vesha in my balana poe. Aur koi koi vesha to bali Brahman balana. Yaar ye to zyada kharab ho gaya. Brahman bhi kuch to acche hote bhale hote.
2: Sudhaya nahi.
1: Aisa nahi.
3: राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता होने से पहले पत्रकार हुआ करते थे, पढ़ी लिखी बातें किया करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने के बाद से समाज में जाति का जहर घोलने की ये जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने दी है। और इसीलिए आप देखिए कि लगातार समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक लगातार गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जातियों को आपस में लड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं।
4: आपको प्रायश्चित भी करना होगा, आपको ब्राह्मणों का एक प्रकार से पूजन करना चाहिए, आपको ब्राह्मणों के सामने एक संदेश उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि अब दोबारा आप ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे। और समाजवादी पार्टी से भी हम कहेंगे कि आप भी इतना बड़ा विषय हो गया और आपकी एक टिप्पणी उस पर नहीं आ रही है। हम अखिलेश यादव जी से मांग करेंगे कि राजकुमार भाटी जैसे नेताओं पर आपको नकेल कसनी होगी, आपको अंकुश लगाना होगा।
0: Dr. Kaushalkant Mishra, spokesperson of the BJP, joins us, but the man of the moment, as it were, Rajkumar Bharti himself joins us. Bharti ji, kya zarurat thi ye bolne ki? Aap keh rahe hain isko out of context liya gaya hai, but jab aap ye bol bhi rahe the, let me just explain the context to our viewers, as was explained by Mr. Bharti. He said that in this event, he was just saying that there are a few such sayings in popular discourse where, you know, such caste-specific slurs are spoken, and I do not attest to that. But आप तो खुद खिलखिलाकर हंस रहे थे, आप उसकी निंदा नहीं कर रहे थे, आप तो खुद खिलखिला के हंस ही रहे थे जब आप ब्राह्मण और वैश्या की बात कर रहे थे, भाटी जी।
5: नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो मैंने इसकी निंदा ही की थी, मैंने इसका विरोध किया था। और मैं जो कोई व्यक्ति, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई किसी जाति या धर्म के खिलाफ बोलता हो या किसी जाति धर्म संप्रदाय को अपमानित करता हो, मैं उसे अच्छा इंसान नहीं मानता, मैं उसे अच्छी बात नहीं मानता। और मैं अपने दिल की बात ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैं कभी किसी जाति या धर्म या समुदाय के खिलाफ बोल ही नहीं सकता। ये विषय ये था कि जवाहर भवन में एक पुस्तक का विमोचन था, पुस्तक का नाम था जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, भारतीय समाज में लोकोक्तियां, जातियों को लेकर लोकोक्तियां, मुहावरे और कहावतें, टॉपिक ही ये था। तो वहां ये बताया जा रहा था, अलग अलग वक्ता ये बोल रहे थे कि क्या क्या कहावतें, किस किस तरह के मुहावरे, किस किस तरह की लोकोक्तियां समाज में प्रचलित हैं। मैंने एक इससे पहले जो कहावत बताई थी वो खुद हमारे समाज के खिलाफ है। मैंने बोला था कि हमें लोग ये सुनाते थे कि गुजर, अहीर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये छह ना होते तो खुले किवाड़ सोते। हंसा मैं इस पे भी था, अगर आप पूरी वीडियो सुनेंगे, मैं इसलिए हंसा रहा था, मैं कहने वालों की मूर्खता पे हंस रहा था। और फिर मैंने ये बोला कि ब्राह्मणों के खिलाफ भी ऐसा नहीं है, एक तरफ से ही है, दूसरी तरफ से भी ब्राह्मणों के खिलाफ इस तरह के बनाए जाते हैं।
0: बताइए कौशल कांत,
5: बोला
0: आप इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेकर के तोड़ मड़ोड़ के इस पे राजनीति क्यों कर रहे हैं? जैसे कि उन्होंने बोला, उन्होंने गुजर, अहीर, कंजर पे ऊपर भी बोला, एंड आई अपोलोजाइज इफ यू नो दिस इज नॉट मेंट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, बट दिस वाज द एग्जैक्ट वर्ड्स कोटेड बाय राजकुमार भाटी। उन्होंने ये भी लोकोक्ति बोली थी कि गुजर, अहीर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये छह ना होते तो खुली दीवार में सोते। किसी गुजर, अहीर ने तो इस पर कोई ऑफेंस नहीं लिया, आप जबरदस्ती इस पर राजनीति क्यों कर रहे हैं कौशलकांत मिश्र?
6: पद्मजा, एक आदम गोंडवी साहब होते थे, उन्होंने एक छोटे सा शेर लिखा था कि काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं उजले लिबास में, और उतरा समाजवाद है

0: राजकुमार भाटी की बात में, यही असली समाजवाद है। ये तो बस मुखौटा है। मैं अखिलेश यादव की ये क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये अखिलेश यादव के ज़माने में अखबार में क्या छपता था कि ब्राह्मणों का हमेशा विरोध करती रही है समाजवादी पार्टी। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, मैं नहीं लेके आया हूँ, पहले ही प्रिंट किया गया है, इसको आप लोग सब लोग देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का असली करेक्टर क्या है। एक ही नहीं है, दूसरी क्लिपिंग है इटावा में, मुलायम सिंह जी जहाँ पर खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे, वहां पर एक ब्राह्मण परिवार को निकाल करके उसकी औरतों को और बच्चों को मुंह पे कालिक पोत करके उनको घुमाया फिराया गया था। ये असली करेक्टर। अभी कुछ दिन पहले इनके पीडीए में पी को पंडित बना दिया था और उसके बाद ये हो रहा है। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, ये सिर्फ और ये पूरा एक इकोसिस्टम चल रहा है पद्मजा। आपके मेरे पास इनका आमंत्रण है, इस आमंत्रण को ध्यान से देखिएगा, इस आमंत्रण को मैं पढ़ता हूँ। ये आमंत्रण सौजन्य कौन था, यानी कि स्पॉन्सर कौन था, राजीव गांधी फाउंडेशन इसका स्पॉन्सर था। किताब का नाम क्या है, जाति एवं सांप्रदायिकता के विषाणु, और लिखने वाले लेखक कौन है, डॉक्टर शकील अंसारी जावेद अख्तर, और मुस्लिम महाज का आयोजन था। और इसके जो वक्ता कौन कौन थे, नाम लेना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। पहले वक्ता हैं योगेंद्र यादव, दूसरे वक्ता अभय कुमार दुबे, तीसरे वक्ता आशुतोष, चौथे वक्ता डॉक्टर हिलाल अहमद, पांचवें वक्ता प्रोफेसर रतनलाल, छठे वक्ता राजकुमार भाटी जी, सातवीं वक्ता शीबा असलम फाहिमी। ये सब नेटवर्क है, नेक्सस है। क्यों? क्योंकि पहले जातियों में हिंदुओं को तोड़ो, क्योंकि हिंदुओं को कभी हरा नहीं सकते, हिंदू कभी नहीं हरा।
1: नहीं, पर उन्होंने तो जातियों में, उन्होंने तो माता प्रसाद पांडे जी को इतना सम्मान दिया है, तो फिर वो कैसे ब्राह्मण के खिलाफ हो सकते हैं? वो तो उल्टा कह रहे हैं कि देखिए इनको हमने इतना बड़ा पद दिया है माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश के अंदर।
0: अरे पद्मजा जी, माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में उनके पिता श्री जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि जो बाप का नहीं हो सकता, जो चचा का नहीं हो सकता, वो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा। ये मैंने थोड़ी ना कहा था, ये तो उनके पिताजी ने ही कहा था। और जब भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जब भी किसी के साथ मिलती है, उसका करेक्टर ही चेंज हो जाता है। एक बार मिली थी समाजवादी पार्टी मायावती के साथ, तो नारा क्या हो गया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जो राम का ना हुआ, जो देश का ना हुआ, जो बाप का ना हुआ, वो किसी समाज का,
1: ये सिर्फ एक बहाना था। बेसिकली इरादा वही है, इरादा वही है कि किसी एक जाति विशेष को निशाने पर लाना, टारगेटिंग अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। और आप तो रिपीट ऑफेंडर रहे हैं। अगर इसको हम मान भी ले कि इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, आप

0: हाथ में होता है पंचांग और दूसरे के हाथ में होता है झाड़ू. लेट्स प्ले दैट आउट, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आप रिपीट ऑफेंडर नहीं है, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए कि पहले आपने एक जाति विशेष के बारे में क्या टिप्पणी की है.
1: नहीं, मुझे याद है जो मैंने
2: बोला. ज्यादातर आपने दो लोगों को निकलते हुए देखा होगा, एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी, एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है. ये जो पंचांग दबा के निकलता है ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है, सब बहकाने वाला सौदा है और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है. दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है.
0: बताइए भाटी जी, पंचांग और तिलक लगा करके वो लोगों को बहलाता है और दक्षिणा लेता है.
1: कौन सा अपराध, इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? पहली बात तो क्या ये किसी जाति के खिलाफ बोला मैंने या किसी?
0: सारे लोग जो हाथ में पंचांग और
1: मैं तो भारत की जाति व्यवस्था पर बोल रहा हूँ और मैं
0: वो लोगों को लूटते हैं, भटकाते हैं और उनसे दक्षिणा लेते हैं.
3: कौन चलता है भाटी?
1: मैं बोल रहा हूँ नहीं, अब जब जैसे आपने कौशलकांत मिश्रा जी को शांति से अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे भी आप बात कहने का अवसर दें. आपने सवाल पूछ लिया, आपने क्लिप सुना दी. मैं जो मैंने इसमें बोला, मैं एक भी शब्द का खंडन नहीं कर रहा. ये भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास सदियों से हो रहा है, महात्मा बुद्ध के ज़माने से हो रहा है, कबीर, नानक, दादू, रैदास, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, अनेक महापुरुष इस देश में हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अनेक हुए जो इस जाति व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते रहे, जहां एक मेहनतकश जाति को अपमानित किया जाता है और एक जाति को ऊपर बताया जाता है, एक को नीचे बताया जाता है. हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं.
0: नहीं नहीं भाटी जी, यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं हो रही थी. यहाँ पे आपने बहुत सिंपली ये बात,
1: सब बराबर है.
0: जो आदमी माथे पे तिलक और हाथ में पंचांग लेकर के निकलता है वो धूर्त होता है, और ये बार बार जो एक तरीके से पिक्चराइजेशन किया जाता है, आप बिल्कुल उसी स्टीरियोटाइप को अपहोल्ड कर रहे थे जो है ना घूसखोर पंडित, धूर्त पंडित, वही आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे और वही आपकी बातों में झलक रहा था. यहाँ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि तोड़ा मरोड़ा, आप उसका खंडन नहीं कर रहे हैं. क्या हाथ में पंचांग लेने का मतलब यह हो जाता है कि आप धूर्त हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं?
1: पदमजा जी सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आपके मन में कोई पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, इसलिए आप
0: इसे तो आपका भी झलक रहा है ना. अगर माथे
1: ने कहा कि सम्मान उसको मिलना चाहिए,
0: आपको लगता है कि वो लोगों को लूटने के लिए निकला है.
1: अब आपने तय कर लिया आप बोलने नहीं देंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ. आपने तय कर लिया कि मैं बोलने नहीं दूंगी, क्योंकि आप शो की एंकर हैं, आप चाहती हैं कि जो आपकी मनमर्जी की बात है वो मैं बोलूं, तो बोलने देंगे नहीं तो नहीं बोलने देंगे.
0: मेरी बात पूरी सुन लीजिए. जो आपने बोला कि एक आदमी हाथ में पंचांग दबा करके निकलता है, क्या उसका क्राइम बस ये है कि वो पंचांग पकड़ा हुआ है और तिलक लगाया हुआ है, मतलब कि वो चोर है? सारे लोग जो तिलक लगाते हैं वो चोर होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं.
1: फायदा क्या इस तरह डिबेट होती है? आप मुझे भाषण देने के लिए आपने बुलाया या मेरे पक्ष सुनने के लिए बुलाया,
0: बताइए?
1: आपको भाषण देना है मुझे आपकी बात बैठ के सुननी है क्या, या अपनी बात कहनी है? मुझे अपनी बात कहने का मौका देंगे आप या नहीं देंगे? मैंने केवल ये कहा है इस वीडियो में, मैंने किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोला है. मैंने ये कहा कि जो आदमी मेहनत करता है, जो उस मोहल्ले की सफाई करता है, सम्मान उसे भी मिलना चाहिए. उसे हम अपमानित करते हैं, उसे सम्मान नहीं देते, उसे बराबर में नहीं बैठने देते. मैंने क्या गलत कहा बताइए आप? ये हमारा संविधान भी कहता है.
0: क्योंकी आपका जो भाषण,
1: अगर आप चाहते हैं कि
0: इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी,
1: हजारों साल
0: आपने सिर्फ दो तस्वीरें पेश की. आपने कहा एक आदमी
1: नहीं नहीं आप पूरा सुनिए, उसमें
0: आदमी झाड़ू पकड़ता है बस.
1: नो नो नो नो,
0: एक आदमी की गलती सिर्फ ये है कि वो तिलक लगाया हुआ है और दूसरा आदमी क्योंकि वो झाड़ू पकड़ा है वो सही है. एक आदमी गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने पंचांग बगल में दबाया है और माथे पे तिलक लगाया है. और ये आपने एक अकेली बात नहीं कही है सर, आपने एक और बात कही है और मैं आपको वो भी कोट करना चाहती हूँ, और मैं वर्बैटिम कोट कर रही हूं. आपने कहा कि हमारा हक किसने खाया? अगर हमारा हक पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी ने नहीं खाया होता तो हमें आरक्षण की जरूरत नहीं होती, और आज भी ये लोग उसी पैनल पे बैठे हुए हैं. कौन? यही पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी. क्या गलती है कि उनका नाम ये है? ये तो आपका पूर्वाग्रह दिखाता ना. इट शोज हाउ यू आर बायस्ड.

0: नहीं, आप बायस्ड हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप एक पक्ष में खड़ी हुई हैं। आप तय करके आई हैं कि आपको मुझे डांट पिलानी है, मुझे भाषण देना है। आप मेरा पक्ष सुन नहीं रही हैं और मैं ऐसी डिबेट को डिबेट नहीं मानता। ये डिबेट नहीं है, ये आप एक आदमी को बुला
1: के ऑफेंसिव पर जाकर के तो कोई एक्सप्लेनेशन,
0: आपका रोल नहीं है जो आप रोल कर रही हैं।
1: आपने कहा
0: कि आपका रोल नहीं है जो आप रोल कर रही
1: हैं। एक तरफ किसी को दबाया जा रहा है,
0: मुझे भाषण,
1: आप उसके खिलाफ बोल रहे थे
0: और गलत भाषण नहीं दे रही हैं आप।
1: मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आपने आइडेंटिफाई करके अगर किसी को गलत पोर्ट्रे किया है उसको फिर आप जाति सूचक कैसे नहीं बोलेंगे भाटी जी?
0: आप गलत आरोप लगा रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं लगातार, आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं, आप बायस्ड हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, आप पत्रकारिता के आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं। अपने शो में एक गेस्ट को बुला के आप लगातार उसे भाषण पिला रही हैं, उसका पक्ष बोलने नहीं दे रही हैं आप, उसका पक्ष सुनने नहीं दे रही हैं श्रोताओं को। ये डिबेट नहीं होती है, मैं घोर निंदा करता हूं इसकी।
1: राजकुमार भाटी जी, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चंस और आपकी बातों को हमने बिल्कुल वर्बैटिम पेश किया है। आई थिंक आपका पक्ष और आपकी बातें लोगों ने सुनी है। आई लीव इट टू देयर विजडम, अगर उनको लगता है बायस किसकी तरफ है, हु वाज बायस्ड, हु ऑलरेडी वांटेड टू प्रोजेक्ट एन इमेज ऑफ अ कम्युनिटी, आई विल लीव इट टू देयर विजडम। और ये आपको भी पता है कि आप तो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं, आप भी इसकी क्लिप डालेंगे, आप इसको बायस कहेंगे, लोग वहां पर भी आकर के खुद से जज कर लेंगे कि कौन सही है और कौन बायस्ड है। फॉर द टाइम बीइंग, राजकुमार भाटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स ऑल्सो टू कौशल कांत मिश्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
6: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
7: India's unshakable news habit. NDTV.com is India's number one English news website.
8: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
6: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
9: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
8: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी।

0: वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
2: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉयज का इश्यू है। एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
3: आमी वेलकम करेछी एवं आमी उनार ट्वीट देखार परे, माने खबरटा देखार परे আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক। স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
4: দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ রিডিউসড দ্য নাম্বার অফ ভেহিকলস ইন হিজ ক্যাভালকেড। The central government officials and ministers are also taking the required austerity measures. The question is that Rahul Gandhi and the Congress party, why are they silent and why have they not followed action in places where there is Congress government? This further proves the point that the Congress party believes in politics, not national interest. This is why whether it is Himachal Pradesh where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi in the mind of the people of the country is considered not as a pro-India politician but as an opportunist anti-India politician.
5: The CBI probe intensifies in the NEET paper leak. At least 5 accused have been arrested so far from different states. Students' anger continues to grow over the cancelled exam and many are demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. NDTV has accessed the timeline of events. As per sources, the paper began circulating 45 hours before the exam and reached Sikar in Rajasthan, Jaipur and other coaching centres. The leak came to light as a student hailing from Sikar sent his father, a hostel owner, the question paper. As per sources, the paper was sold for around 10 to 15 lakh rupees and the CBI is looking closely into the Telegram groups. At least 120 closed Telegram groups were allegedly made to circulate this NEET UG paper. Now, sources suggest that the leak network had access to questions from multiple subjects, built a question bank from leaked paper. Now, as per the National Testing Agency, the new schedule will be announced in 7 to 10 days and the new exam will be held without any fees. Sample the reactions.
6: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बार जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया।
7: सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दें, जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में ना उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का हाई नहीं है, सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा, इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पर कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो।
5: Breaking news coming in at this hour. Delhi police have now arrested social media influencer Dr. Neelam Singh, alias the Skin Doctor, for allegedly posting tweets against the Kapoor family following the death of businessman Sanjay Kapoor. The complaint, as per sources, was lodged at Vasant Kunj police station by the Kapoor family. And remember, Sanjay Kapoor was the chairman of auto components company Sona Comstar and former husband of actor Karisma Kapoor. He died in London on June 12 while playing polo, and after which the Skin Doctor was posting some alleged tweets which were against the interest of the Kapoor family. My colleague Akhil is also joining with more details. Akhil, do tell us about the charges against the Skin Doctor. What exactly was posted by this?
8: Well, if you see what we have seen, that today in a fresh development, Delhi Police South West District team has arrested a person who has been identified as Dr. Neelam Singh, alias the Skin Doctor, has been arrested in connection with the case. And what we have seen that earlier she has posted on social media platform X regarding the death of business tycoon Sanjay Kapoor. Because if you see what we have seen that last year in 2025 on June 12th, Sanjay Kapoor mysteriously died. And after that, what we have seen that there were several conjectures that were peddled that he died of this reasons or that reasons. And then what we have seen that later on, when the post-mortem report has come out, in which what we have seen that what we have got to know from the post-mortem report that he died due to the medical complication and heart-related complication. And after that, what we have also seen that Sanjay Kapoor's mother has raised question regarding his death. And she has said that if you see, she was pressurized at that point in time when she was emotionally down. She was pressurized to sign some documents as well. And in that regard, what we have seen that Dr. Neelam Singh has made several comments, and after that she has posted something on social media platform X as well. And after that, Sanjay Kapoor's family, the business tycoon's family, has lodged a police complaint at Vasant Kunj. And after that, Delhi police has taken action in that regard and they have finally arrested Dr. Neelam Singh now.
5: Right. Thank you so much, Akhil, for those information. Thank you for tracking it. For now, we are slipping into a very short break, but right after this break, we'll tell you what's happening at the Cannes Film Festival.

0: tension. Take a look at the reactions of the BJP netas.
1: कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें.
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए. और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए.
3: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज एडॉप्ट किया गवर्नरशिप

0: Absolutely. Thanks, Deepak, for those details. Now, after the uproar over the appointment of astrologer Radhan Pandit as a special officer on duty to the chief minister, Vijay's government has finally revoked his appointment. In fact, NDTV was the first channel to break this, and this issue took center stage in Tamil Nadu politics. In big U-turn now, Chief Minister Vijay has revoked the appointment of astrologer within 24 hours. This is the first U-turn that has been taken by this new government in Tamil Nadu. This came after huge backlash from allies as well as opposition. In fact, others in the opposition ranks were also claiming that an officer on special duty to the chief minister requires more than just being an astrologer. Hence, a credible and a capable person should get a chance instead of just a person having close connection with the sitting chief minister. Sample the reactions.
1: அறிவியலை வளர்க்கும் திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும் என்று நான் விடுதலை சிறுத்தைகளின் சார்பில் கோரிக்கை வைக்கின்றேன். அறிவியலார்ந்த மனிதநேயம், ஆய்ந்து தெளிந்த சீர்திருத்தம்.
2: நாங்கள் எவ்வாறு நடந்து கொள்கிறோம் என்பதை நாட்டு மக்கள் பார்க்கிறார்கள். எனவே எந்த தனிப்பட்ட விருப்பம் எங்களுக்கு இல்லை, விருப்பங்களும் எங்களுக்கு இல்லை. டாஸ்மார்க் அந்த இடங்களை, கொஞ்சம் குறிப்பிட்ட இடங்களை அவர்கள் பள்ளிக்கூடங்கள் கல்லூரிகள் கோயில்கள் இருக்கிற இடங்களில் அதை இணைக்க வேண்டும் என்பது நல்லது தான். அதே நேரத்தில் அந்த ஊழியர்களின் வாழ்க்கை இருக்கிறது, அது பற்றியும் சிந்திங்கள் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம். அரசு வந்து ஜோதிடர் ஒருவரை நியமிக்கிற போது எந்த மதத்தின் மீது நமக்கு வெறுப்பு அல்ல.
3: ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் பார்லிமெண்ட் அசம்பிளி ஹேஸ் நோ ரோல் டு பிளே, ஒன்லி தி டைமிங் வில் பி கிவன் பை தி அஸ்ட்ராலஜர். தட் இஸ் வை ஐ திங்க் ஹி அப்பாயிண்டட் ஹிம். வாட் இஸ் ஹீ இஸ் நாட் அன் அஃபிஷியல். He needs somebody who can advise him properly as per rules and as per the government powers. What can an astrologer do? He can predict, that's all. And that prediction too is subject to happenings. I don't know why this man, I think he has more faith in him than his party.
0: Has passed its first challenge, which was the flow test, with 144 MLAs backing Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay. He has won the trust vote. But the political repercussions were heavily witnessed after this flow test was over. The AIADMK is facing a rebel. Now, 22 MLAs from AIADMK bagged Vijay in the flow test, and now the AIADMK has threatened to move against them. Many, in fact, including Shanmugam and Velumani, are about to lose their party post after AIADMK has decided to move against these rebel MLAs and decided to remove them from their party positions currently. Moreover, the Congress, VCK, left IUML also extended support to TVK, while one ex-MMK MLA also bagged Vijay. This brought Vijay to a comfortable majority, but the trouble remains on the rebel AIADMK MLAs that will now be facing the heat after EPS has decided to clamp down their party positions. Sample the reactions that are coming in.
4: முதலில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தில் மக்களுக்கான இந்த ஆட்சியை, மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்து வெற்றி பெற செய்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நமது அரசின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களும் நம்மீது நம்பிக்கை வைத்து தீர்மானமாக வாக்களித்தனர். வாகை சூடும் அந்த வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் 34.92% 1,72,26,208 வாக்குகளை மக்கள் தந்தனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தனி பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். குதிரை பேரத்தில் எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்று கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
5: இருக்கின்ற கட்சியாகத்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும். எங்களுக்கு எதிரி கட்சி இல்லை, எதிர்கட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்போம். எங்களுடைய தலைவர்கள் அந்த பாதையைத்தான் எங்கள் வலியுறுத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவித்து, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எதிர்த்துத்தான் வாக்களிப்பார்களா என்பதை தெரிவித்து அமர்கின்றேன். தீர்ப்பளித்து இன்றைக்கு முதலமைச்சருக்கு வாக்களித்துள்ளார்கள், அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம் அதிமுக சார்பாக. அதே போல நாங்கள் யாரும் பதவிக்கு ஆசைப்படுவது கிடையாது, பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு அவர் கிடையாது.
6: தலைவருக்கு தெரியாம திருட்டுத்தனமாக இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவு தர வச்சிருந்தீங்க. இப்ப நான் சொல்றது ரொம்ப டீசென்டான வெர்ஷன். உங்க ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஆட்சியா இல்லாம ரியல் ஆட்சியா நடத்துங்க, அது மட்டும்தான்.
0: Now, days after PM Modi's call for saving fuel, Prime Minister Narendra Modi was seen leading by example. He has cut down the number of vehicles in his own convoy to just 2 cars. And the visuals on your screen show the earlier convoy of the Prime Minister, which was at least 12 cars in the convoy. And now, with just 2 cars, seen as per sources, the Prime Minister has even asked for the number of electric vehicles to be increased in the convoy. Remember that earlier this week, Prime Minister asked the nation to reduce the fuel usage, and hence he is now following and leading by example and asking others to follow. Now, not just the Prime Minister, but even the NDA CMs have decided to cut down their convoys. The convoy size has been reduced significantly by the ministers as well. And this is not just the first, but the second time that the Prime Minister has appealed about saving fuel, as there is a fuel shortage due to the ongoing war in the Iran versus US tension. Take a look at the reactions of the BJP letters.
7: कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पुल करने का प्रयास करें.
8: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए, और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
9: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया, गवर्नर चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा, नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा, कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से, कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉइज का इश्यू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
10: আমি ওয়েলকাম করেছি এবং আমি উনার টুইট দেখার পরে মানে খবরটা দেখার পরে আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক, স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
11: দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ রিডিউস দি নাম্বার অফ ভেহিকলস ইন হিজ ক্যাভালকেড, দি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অফিশিয়ালস অ্যান্ড মিনিস্টার্স আর অলসো টেকিং দ্য রিকোয়ার্ড অস্টেরিটি মেজার্স। The question is that Rahul Gandhi and the Congress party, why are they silent and why have they not followed action in places where there is Congress government? This further proves the point that the Congress party believes in politics, not national interest. This is why whether it is Himachal Pradesh where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi in the mind of the people of the country is considered not as a pro-India politician but as an opportunist anti-India politician.
0: The CBI probe intensifies in the NEET paper leak. At least 5 accused have been arrested so far from different states. Students' anger continues to grow over the cancelled exam and many are demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. NDTV has accessed the timeline of events. As per sources, the paper began circulating 45 hours before the exam and reached Sikar in Rajasthan, Jaipur and other coaching centres. The leak came to light as a student hailing from Sikar sent his father, a hostel owner, the question paper. As per sources, the paper was sold for around 10 to 15 lakh rupees and the CBI is looking closely into the Telegram groups. At least 120 closed Telegram groups were allegedly made to circulate this NEET UG paper. Now, sources suggest that the leak network had access to questions from multiple subjects, built a question bank from leaked paper. Now, as per the National Testing Agency, the new schedule will be announced in 7 to 10 days and the new exam will be held without any fees. Sample the reactions.
12: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बार जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया।
13: सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि एक तो ये एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं और उसके बाद इनके लीक होने की जिम्मेदारी बच्चे उन्हें दे रहे हैं और इसके बाद भी वो इतने ढीठ है कि पहले कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामले को दबा दें, जब देखा कि सोशल मीडिया और हर जगह चीज़ें फैल गई, अब लोग सड़क में ना उतर जाएं बच्चे, तब आनन फानन में कैंसिल किया। इनके बस का है ही नहीं है, सबसे पहली जांच एनटीए पे होनी चाहिए। और नीट तो रद्द हुआ, एनटीए जब तक नहीं रद्द होगा नीट बार बार रद्द ये कैंसिल होते रहेगा, इनके बस का बात नहीं है। हमने टेम्पू उठा के दे दिया एयरपोर्ट पर कि टेक ऑफ कर जाए, नहीं उड़ पाएगा वो।
0: Breaking news coming in at this hour. Delhi police have now arrested social media influencer Dr. Neelam Singh, alias the Skin Doctor, for allegedly posting tweets against the Kapoor family following the death of businessman Sanjay Kapoor. The complaint, as per sources, was lodged at Vasant Kunj police station by the Kapoor family. And remember, Sanjay Kapoor was the chairman of auto components company Sona Comstar and former husband of actor Karizma Kapoor. He died in London on June 12 while playing polo, and after which the Skin Doctor was posting some alleged tweets which were against the interest of the Kapoor family. My colleague Akhil is also joining with more details. Akhil, do tell us about the charges against the Skin Doctor. What exactly was posted by this?
14: Well, if you see what we have seen, that today in a fresh development, Delhi Police South West District team has arrested a person who has been identified as Dr. Neelam Singh, alias the Skin Doctor, has been arrested in connection with the case. And what we have seen that earlier she has posted on social media platform X regarding the death of business tycoon Sanjay Kapoor. Because if you see what we have seen that last year in 2025 on June 12th, Sanjay Kapoor mysteriously died. And after that, what we have seen that there were several conjectures that were peddled that he died of this reasons or that reasons. And then what we have seen that later on, when the post-mortem report has come out, in which what we have seen that what we have got to know from the post-mortem report that he died due to the medical complication and heart related complication. And after that, what we have also seen that Sanjay Kapoor's mother has raised question regarding his death, and she has said that if you see she was pressurized at that point in time when she was emotionally down, she was pressurized to sign some documents as well. And in that regard, what we have seen that Dr. Neelam Singh has made several comments, and after that she has posted something on social media platform X as well. And after that, Sanjay Kapoor's family, the business tycoon's family, has lodged a police complaint at Vasant Kunj. And after that, Delhi police has taken action in that regard, and they have finally arrested Dr. Neelam Singh now.
0: Right. Thank you so much, Akhil, for those information. Thank you for tracking it. For now, we are slipping into a very short break, but right after this break, we'll tell you what's happening at the Cannes Film Festival.

0: शकील अंसारी, जावेद अख्तर और मुस्लिम महाज का आयोजन था। और इसके जो वक्ता कौन कौन थे, नाम लेना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम कैसे काम करता है। पहले वक्ता हैं योगेंद्र यादव, दूसरे वक्ता अभय कुमार दुबे, तीसरे वक्ता आशुतोष, चौथे वक्ता डॉक्टर हिलाल अहमद, पांचवें वक्ता प्रोफेसर रतनलाल, छठे वक्ता राजकुमार भाटी जी, सातवीं वक्ता शीबा असलम फाहिमी। ये सब नेटवर्क है, नेक्सस है। क्यों? क्योंकि पहले जातियों में हिंदुओं को तोड़ो, क्योंकि हिंदुओं को कभी हरा नहीं सकते, हिंदू कभी नहीं हरा।
1: नहीं, पर उन्होंने तो जातियों में, उन्होंने तो माता प्रसाद पांडे जी को इतना सम्मान दिया है, तो फिर वो कैसे ब्राह्मण के खिलाफ हो सकते हैं? वो तो उल्टा कह रहे हैं कि देखिए इनको हमने इतना बड़ा पद दिया है माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश के अंदर।
0: अरे पद्मजा जी, माननीय अखिलेश यादव जी के बारे में उनके पिता श्री जो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उन्होंने कहा था कि जो बाप का नहीं हो सकता, जो चचा का नहीं हो सकता, वो देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा। ये मैंने थोड़े ना कहा था, ये तो उनके पिताजी ने ही कहा था। और जब भी अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी जब भी किसी के साथ मिलती है, उसका कैरेक्टर ही चेंज हो जाता है। एक बार मिली थी समाजवादी पार्टी मायावती के साथ, तो नारा क्या हो गया था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जो राम का ना हुआ, जो देश का ना हुआ, जो बाप का ना हुआ, वो किसी समाज का,
1: ये सिर्फ एक बहाना था। बेसिकली इरादा वही है, इरादा वही है कि किसी एक जाति विशेष को निशाने पर लाना, टारगेटिंग अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। और आप तो रिपीट ऑफेंडर रहे हैं। अगर इसको हम मान भी ले कि इसको तोड़ा मरोड़ा गया है, आप तो रिपीट ऑफेंडर रहे हैं। आपने तो पहले भी कितने स्टेटमेंट्स दिए हैं।
2: नहीं नहीं, नो नो नो, आप गलत आरोप लगा रही है मेरे ऊपर।
1: नहीं, कैसे
2: ये गलत आरोप लगा रही है?
1: क्या गलत आरोप लगा रही
2: है? फिर दोहरा रहा हूं मैं, किसी जाति, किसी ये जो कह रही है कि आप रिपीट ऑफेंडर रहे हैं, मतलब मैं ऑफेंड करता रहूं?
1: हाँ,
2: लेकिन
1: बिल्कुल?
2: मैं, आपने अभी कौशल कांत मिश्रा जी को पूरा समय दिया, वो नहीं, कैसे?
1: चलिए आपको सुना देते हैं, भाटी जी को ऑन एयर रखिए, उनको उनका पहले का एक वक्तव्य सुना देते हैं। हर सुबह दो लोग निकलते हैं हर कॉलोनी के अंदर से, एक के हाथ में होता है पंचांग और दूसरे के हाथ में होता है झाड़ू। लेट्स प्ले दैट आउट, क्योंकि आपको अगर लग रहा है कि आप रिपीट ऑफेंडर नहीं हैं, एक बार आप खुद ही सुन लीजिए कि पहले आपने एक जाति विशेष के बारे में क्या टिप्पणी की है।
2: नहीं, मुझे याद है जो मैंने बोला,
3: ज्यादातर आपने दो लोगों को निकलते हुए देखा होगा, एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है, सब बहकाने वाला सौदा है, और बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले की सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, गंदगी हटाता है, मेहनत करता है, पसीना बहाता है।
1: बताइए भाटी जी, पंचांग और लगा करके वो लोगों को बहलाता है और दक्षिणा लेता है।
2: इसमें मैंने कौन सा अपराध कर दिया? पहली बात तो क्या ये किसी जाति के खिलाफ बोला मैंने?
1: सारे लोग जो हाथ में पंचांग और
2: तो भारत की जाति व्यवस्था पर बोल रहा हूँ, और मैं
1: लोगों को लूटते हैं, भटकाते हैं, उनसे दक्षिणा लेते हैं।
0: कौन चलता भाटी?
2: मैं बोल रहा हूँ, नहीं, अब जब जैसे आपने कौशल कांत मिश्रा शांति से अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मुझे भी आप बात कहने का अवसर दें। आपने सवाल पूछ लिया, आपने क्लिप सुना दी, मैं जो मैंने इसमें बोला, मैं एक भी शब्द का खंडन नहीं कर रहा। ये भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास सदियों से हो रहा है, महात्मा बुद्ध के ज़माने से हो रहा है, कबीर, नानक, दादू, रैदास, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, साहू जी महाराज, मान्यवर काशीराम, अनेक महापुरुष इस देश में हुए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अनेक हुए जो इस जाति व्यवस्था को और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का प्रयास करते रहे, जहां एक मेहनतकश जाति को अपमानित किया जाता है और एक जाति को ऊपर बताया जाता है, एक को नीचे बताया जाता है। हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं।
1: नहीं नहीं, भाटी जी, यहाँ ऊंच नीच की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे आपने बहुत सिंपली ये बात,
2: सब बराबर है।
1: जो आदमी माथे पे तिलक और हाथ में पंचांग लेकर के निकलता है वो धूर्त होता है, और ये बार बार जो एक तरीके से पिक्चराइजेशन किया जाता है, आप बिल्कुल उसी स्टीरियोटाइप को अपहोल्ड कर रहे थे, जो है ना घूसखोर पंडित, धूर्त पंडित, वही आप दिखाने की कोशिश कर रहे थे और वही आपकी बातों में झलक रहा था। यहाँ तो आप खुद ही कह रहे हैं कि तोड़ा मरोड़ा, आप उसका खंडन नहीं कर रहे हैं। क्या हाथ में पंचांग लेने का मतलब यह हो जाता है कि आप धूर्त हैं, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं?
2: पदमजा जी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए,

0: आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आपके मन में कोई पूर्वाग्रह बैठा हुआ है, इसलिए आप
1: इसे तो आपका भी झलक रहा है ना। अगर माथे
0: ने कहा कि सम्मान उसको मिलना चाहिए,
1: आपको लगता है कि वो लोगों को लूटने के लिए निकला है।
0: अब आपने तय कर लिया आप बोलने नहीं देंगे तो मैं चुप हो जाता हूँ। आपने तय कर लिया कि मैं बोलने नहीं दूंगी, क्योंकि आप शो की एंकर हैं, आप चाहती हैं कि जो आपकी मनमर्जी की बात है वो मैं बोलूं, तो बोलने देंगे नहीं तो नहीं बोलने देंगे। मेरी बात पूरी
1: सुनिए जी, जो आपने बोला कि एक आदमी हाथ में पंचांग दबा करके निकलता है, क्या उसका क्राइम बस ये है कि वो पंचांग पकड़ा हुआ है और तिलक लगाया हुआ है, मतलब कि वो चोर है? सारे लोग जो तिलक लगाते हैं वो चोर होते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं।
0: फायदा क्या इस तरह डिबेट होती है? आप मुझे भाषण देने के लिए आपने बुलाया या मेरे पक्ष सुनने के लिए बुलाया,
1: बताइए?
0: आपको भाषण देना है मुझे? मुझे आपकी बात बैठ के सुननी है क्या या अपनी बात कहनी है? मुझे अपनी बात कहने का मौका देंगी आप या नहीं देंगी? मैंने केवल ये कहा है इस वीडियो में, मैंने किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं बोला है। मैंने ये कहा कि जो आदमी मेहनत करता है, जो उस मोहल्ले की सफाई करता है, सम्मान उसे भी मिलना चाहिए। उसे हम अपमानित करते हैं, उसे सम्मान नहीं देते, उसे बराबर में नहीं बैठने देते। मैंने क्या गलत कहा है बताइए आप? ये हमारा संविधान भी कहता है।
1: क्योंकि आपका जो भाषण,
0: अगर आप चाहते हैं कि
1: इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी,
0: हजारों साल
1: आपने सिर्फ दो तस्वीरें पेश की। आपने कहा एक आदमी
0: नहीं नहीं आप पूरा सुनिए, उसमें
1: आदमी झाड़ू पकड़ता है बस।
0: नो नो नो नो,
1: एक आदमी की गलती सिर्फ ये है कि वो तिलक लगाया हुआ है और दूसरे आदमी क्योंकि वो झाड़ू पकड़ा है वो सही है। एक आदमी गलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने पंचांग बगल में दबाया है और माथे पे तिलक लगाया है। और ये आपने एक अकेली बात नहीं कही है सर, आपने एक और बात कही है और मैं आपको वो भी कोट करना चाहती हूँ, और मैं वर्बैटिम कोट कर रही हूँ। आपने कहा कि हमारा हक किसने खाया? अगर हमारा हक पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, शुक्ला जी, त्रिपाठी जी ने नहीं खाया होता तो हमें आरक्षण की जरूरत नहीं होती, और आज भी ये लोग उसी पैनल पे बैठे हुए हैं। कौन? यही पांडे जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी। क्या गलती है कि उनका नाम ये है? ये तो आपका पूर्वाग्रह दिखाता ना, इट शोज हाउ यू आर बायस्ड।
0: नहीं आप बायस्ड हैं, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं। आप एक पक्ष में खड़ी हुई हैं, आप तय करके आई हैं कि आपको मुझे डांट पिलानी है, मुझे भाषण देना है। आप मेरा पक्ष सुन नहीं रही हैं और मैं ऐसी डिबेट को डिबेट नहीं मानता। ये डिबेट नहीं है, ये आप एक आदमी को बुला
1: के ऑफेंसिव पर जाकर
0: कर रही
1: हैं, तो कोई एक्सप्लेनेशन
0: आपका रोल नहीं है जो आप रोल कर रही हैं।
1: आपने कहा
0: ये आपका रोल नहीं है जो आप रोल कर रहे हैं।
1: एक तरफ किसी को दबाया जा रहा है,
0: मुझे भाषण,
1: आप उसके खिलाफ बोल रहे थे
0: और गलत
1: भाषण नहीं दे रही
0: हैं आप।
1: मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आपने आइडेंटिफाई करके अगर किसी को गलत पोर्ट्रे किया है उसको फिर आप जाति सूचक कैसे नहीं बोलेंगे भाटी जी?
0: आप गलत आरोप लगा रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं लगातार, आप प्रोपेगंडा कर रही हैं, आप बायस्ड हैं, आप निष्पक्ष नहीं हैं, आप पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं, आप पत्रकारिता की आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं। अपने शो में एक गेस्ट को बुला के आप लगातार उसे भाषण पिला रही हैं, उसका पक्ष बोलने नहीं दे रही हैं आप, उसका पक्ष सुनने नहीं दे रही हैं श्रोताओं को। ये डिबेट नहीं होती है, मैं घोर निंदा करता हूं इसकी।
1: राजकुमार भाटी जी, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली आंसरिंग द क्वेश्चंस, और आपकी बातों को हमने बिल्कुल वर्बैटिम पेश किया है। आई थिंक आपका पक्ष और आपकी बातें लोगों ने सुनी है। आई लीव इट टू देयर विजडम, अगर उनको लगता है बायस किसकी तरफ है, हु वाज बायस्ड, हु ऑलरेडी वांटेड टू प्रोजेक्ट
0: एन इमेज ऑफ अ कम्युनिटी,
1: आई विल लीव इट टू देयर विजडम। और ये आपको भी पता है कि आप तो सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव हैं, आप भी इसकी क्लिप डालेंगे, आप इसको बायस्ड कहेंगे, लोग वहां पर भी आकर के खुद से जज कर लेंगे कि कौन सही है और कौन बायस्ड है। फॉर द टाइम बीइंग, राजकुमार भाटी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स ऑल्सो टू कौशल कांत मिश्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
2: Twenty-one days in Kashmir. People have bombarded me, friends, with requests for an unfiltered list of things I saw and observed on the ground.
3: Very special ground report from the line of control. There were some children who've lost limbs in the shelling.
2: They're now India's smallest but possibly the most powerful crime family. Cough syrup has killed at least 25 children. Dicoid saab, aise mat kijiye. Suddenly people are wondering about the weaponization of India-Pakistan cricket. We live and breathe elections. You will not believe your eyes or ears when I show you what I'm about
4: to do. And for a country that has fought so many wars in the mountains and at high altitude.
2: We're standing on the Indian Navy's newest warship.
3: The Line of Control, Shiv Arun, NDTV.
5: Economy, business, world, technology. Noise filtered, numbers decoded. Insights that rewire your worldview. From governance to growth, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi. Weeknights on NDTV Profit.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
7: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
10: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
11: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
12: आज के की खाबे झालमुड़ी ना माचेर झोल।
10: How will you celebrate?
11: झालमुड़ी माचेर झोल विद रसगुल्ला।
13: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
14: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
15: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
16: One clip that went most viral was the non-interview. Crew spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the pole right, which is quite fantastic.
17: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
18: I think that Shiv was not the only incident.
19: Tobi puran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে.
20: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
21: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
20: The show that sets the prime time agenda.
21: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
20: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: बढ़ गई है। हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इंपोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
2: कोई सारे ऑस्ट्रेटी मेजर हमने आज अडॉप्ट किया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा। नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा। स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा। कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से। कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉयज का इश्यू है। एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
3: আমি ওয়েলকাম করেছি এবং আমি ওনার টুইট দেখার পরে, মানে খবরটা দেখার পরে, আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক। স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
4: The Prime Minister has reduced the number of vehicles in his cavalcade. The central government officials and ministers are also taking the required austerity measures. The question is that Rahul Gandhi and the Congress party, why are they silent and why have they not followed action in places where there is Congress government? This further proves the point that the Congress party believes in politics, not national interest. This is why, whether it is Himachal Pradesh, where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi, in the mind of the people of the country, is considered not as a pro-India politician, but as an opportunist anti-India politician.
5: The CBI probe intensifies in the NEET paper leak. At least 5 accused have been arrested so far from different states. Students' anger continues to grow over the cancelled exam and many are demanding

0: இந்த ஆட்சியை, மனசாட்சி உள்ள மக்களாட்சியை ஆதரித்து வெற்றி பெற செய்த மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நெஞ்சார்ந்த நன்றியை நமது அரசின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மக்களும் நம்மீது நம்பிக்கை வைத்து தீர்மானமாக வாக்களித்தனர். வாகை சூடும் அந்த வரலாறு திரும்பியது. விசில் அலை வெற்றி அலையாக மாறியது. ஒரு விரல் புரட்சி விசில் புரட்சியானது. கட்சி ஆரம்பித்த 3 ஆண்டுகளுக்குள் 34.92% 1,72,26,208 வாக்குகளை மக்கள் தந்தனர். தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை தனி பெரும் கட்சியாக சட்டமன்றத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். குதிரை பேரத்தில் எமது அரசு ஈடுபடுகிறது என்று கருத்தை தெரிவித்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுக்கு நான் ஒன்றை மட்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். இந்த அரசு குதிரை வேகத்தில் செயல்படுகிற அரசே தவிர குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுகிற அரசு இல்லை என்பதை ஆணித்தரமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
1: இருக்கின்ற கட்சியாகத்தான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கும். எங்களுக்கு எதிரி கட்சி இல்லை, எதிர்கட்சி என்ற நிலைப்பாட்டில் தான் நாங்கள் எப்பொழுதும் இருப்போம். எங்களுடைய தலைவர்கள் அந்த பாதையைத்தான் எங்கள் வலியுறுத்தி சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த நேரத்திலே பதிவித்து, மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் கொண்டு வந்த தீர்மானத்தை நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம். அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக உறுப்பினர்கள் அனைவரும் எதிர்த்துத்தான் வாக்களிப்பார்களா என்பதை தெரிவித்து அமர்கின்றேன்.
2: தீர்ப்பளித்து இன்றைக்கு முதலமைச்சருக்கு வாக்களித்துள்ளார்கள், அதற்கு நாங்கள் ஆதரவு அளிக்கிறோம் அதிமுக சார்பாக. அதே போல நாங்கள் யாரும் பதவிக்கு ஆசைப்படுவது கிடையாது, பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு அவர் கிடையாது.
3: தலைவருக்கு தெரியாம திருட்டுத்தனமாக இந்த ஆட்சிக்கு ஆதரவு தர வச்சிருந்தீங்க. இப்ப நான் சொல்றது ரொம்ப டீசென்டான வெர்ஷன். உங்க ஆட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஆட்சியா இல்லாம ரியல் ஆட்சியா நடத்துங்க, அது மட்டும்தான்.
4: Now, days after PM Modi's call for saving fuel, Prime Minister Narendra Modi was seen leading by example. He has cut down the number of vehicles in his own convoy to just 2 cars. And the visuals on your screen show the earlier convoy of the Prime Minister, which was at least 12 cars in the convoy. And now, with just 2 cars, seeing as per sources, the Prime Minister has even asked for the number of electric vehicles to be increased in the convoy. Remember that earlier this week, Prime Minister asked the nation to reduce the fuel usage, and hence he is now following and leading by example and asking others to follow. Now, not just the Prime Minister, but even the NDA CMs have decided to cut down their convoys. The convoy size has been reduced significantly by the ministers as well. And this is not just the first, but the second time that the Prime Minister has appealed about saving fuel, as there is a fuel shortage due to the ongoing war in the Iran versus US tension. Take a look at the reactions of the BJP netas.
5: कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे. आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है. साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है. हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा. शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे. अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पुल करने का प्रयास करें।
6: माननीय प्रधानमंत्री जी ने पब्लिक मंच से भी बोला है और हम सबको भी गाइड करते हैं हमेशा कि यथासंभव कम से कम खर्चे रखो, जिससे कि आज के युग में जो हमारा रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम अपने जीवन शैली में परिवर्तन लाए। और ये मेरा निवेदन सभी से है, पब्लिक लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में देखें, अगर हम हर जगह हम यथासंभव जो भी हमारी इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन कम करें, ऐसा हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए।
7: कोई सारे ऑस्ट्रेटिव मेजर हमने आज अडॉप्ट किया, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर का कन्वॉय साइज डाउन साइज होगा, नया व्हीकल हम अगले 6 महीना नहीं खरीदूंगा, स्क्रैपिंग को हम लोग एनकरेज करूंगा, कोई भी विदेशी सामान हम अगले 6 महीना तक नहीं खरीदूंगा सरकार का ओर से, कोई फॉरेन ट्रेवल नहीं होगा, गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा, प्राइवेट फॉरेन ट्रेवल भी नहीं होगा जहां तक सरकार और सरकारी एम्प्लॉयज का इश्यू है, एक्सेप्ट मेडिकल ट्रीटमेंट नोबडी विल गो टू अब्रॉड। सो असम इन ए हम्बल वे प्रधानमंत्री जी का अपील को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगा।
8: आमी वेलकाम करेछी एवं आमी उनार ट्वीट देखार परे माने खबरटा देखार परे আমিও আমার সিকিউরিটি দায়িত্বে থাকা লোকজনকে বলেছি অপ্রয়োজনীয় গাড়ি রাখার প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের পথপ্রদর্শক, স্বচ্ছ ভারত অভিযান থেকে রাষ্ট্রবাদের উত্থান, ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে সনাতন সংস্কৃতির জাগরণ, সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস সবকা প্রয়াসের তিনি প্রবর্তক।
9: দ্য প্রাইম মিনিস্টার হ্যাজ রিডিউসড দ্য নাম্বার অফ ভেহিকলস ইন হিজ ক্যাভালকেড। The central government officials and ministers are also taking the required austerity measures. The question is that Rahul Gandhi and the Congress party, why are they silent and why have they not followed action in places where there is Congress government? This further proves the point that the Congress party believes in politics, not national interest. This is why whether it is Himachal Pradesh where the Congress party increased the prices of the petrol and diesel in the past, or whether it is the Karnataka and Telangana Congress government, all of them are looking at politicking, not nation's interest. This is why Rahul Gandhi in the mind of the people of the country is considered not as a pro-India politician but as an opportunist anti-India politician.
4: The CBI probe intensifies in the NEET paper leak. At least 5 accused have been arrested so far from different states. Students' anger continues to grow over the cancelled exam and many are demanding the resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. NDTV has accessed the timeline of events. As per sources, the paper began circulating 45 hours before the exam and reached Sikar in Rajasthan, Jaipur and other coaching centres. The leak came to light as a student hailing from Sikar sent his father, a hostel owner, the question paper. As per sources, the paper was sold for around 10 to 15 lakh rupees and the CBI is looking closely into the Telegram groups. At least 120 closed Telegram groups were allegedly made to circulate this NEET UG paper. Now, sources suggest that the leak network had access to questions from multiple subjects, built a question bank from leaked paper. Now, as per the National Testing Agency, the new schedule will be announced in 7 to 10 days and the new exam will be held without any fees. Sample the reactions.
10: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने आज जो नीट का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिया है। हमारा मानना है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लगातार अपने ड्यूटीज को करने में फेल हो रही है और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर का कि वो रिजाइन करें और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी के एग्जाम में इस बार जिस तरह की गड़बड़ी पाई गई है और जिस तरह से ये पूरे मामले को इनिशियली दबाने की कोशिश की गई और फिर बाद में जब सरकार ने कड़े कदम उठाए और सीबीआई को इस मामले में लगाया तब नीट को कैंसिल किया गया।
11: सबसे पहला तो ये है कि हर बार ये जो लीक होता है बच्चों ने फिर दोबारा पकड़ा है, जिनकी जिम्मेदारी थी, जो एजेंसीज की जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था कि आप सतर्कता कमेटी बनाइए, उन्होंने भी नहीं बनाया। तो मतलब समझिए कि